दिली कारी सीता बड़ा ही प्यारा है। Bana nguvu ya mahusiano ya upendo.